0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 मेगाहर्ट्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

रुपए क्यू बार में आवत हुई क्लॉक आज अपन बैंक वित्तीय संस्था चाहे वॉलेट में संपर्क करी। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस ओ इंटरनेशनल पेमेंट ऐप मन से नेपाल पे क्यू आर में सहजिल से भुगतानी पाए। नेपाल पे क्यू आर नेपाल के अपने क्यू आर।

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 मेगाहर्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ.
2: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

0: तो था ही ना यार।
1: शहर में भीड़ सब मानसी अकेला, टेंशन गर्मी ठेलम ठेला, हर कोई जिंदगी से धकेला, सानो बाप माँ ठूलो झमेला।

0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो
1: रेडियो भेरी एफएम रेडियो भेरी एफएम
2: रेडियो भेरी एफएम 98.6 रेक्सी 2.7 मेगाहर्ट्ज
3: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ
4: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो
1: रेडियो भेरी एफएम।

0: नेपाल पे क्यूआर में आवत हुई क्लर्क आज अपन बैंक वित्तीय संस्था चाह वॉलेट में संपर्क करी। मोबाइल बैंकिंग एप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस ओ इंटरनेशनल पेमेंट एप मन से नेपाल पे क्यूआर में सहजील से भुगतानी पाए। नेपाल पे क्यूआर नेपाल के अपने क्यूआर।
1: रेडियो भेरी एफएम

संगे नेपाल पे क्यूआर में आवत हुई क्लॉक आज अपन बैंक वित्तीय संस्था चाह वॉलेट में संपर्क करी मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस ओ इंटरनेशनल पेमेंट ऐप मन से नेपाल पे क्यूआर में सहजिल से भुगतानी पाए नेपाल पे क्यूआर नेपाल के अपने क्यूआर

0: नेपाल पेटीबार में आवत हुई क्लक आज अपन बैंक वित्तीय संस्था चाह वॉलेट में संपर्क करी मोबाइल बैंकिंग एप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस ओ इंटरनेशनल पेमेंट एप मन से नेपाल पे क्यूआर में सहजिल से भुगतानी पाए नेपाल पे क्यूआर नेपाल के अपने क्यूआर
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजे को छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

नेपाल पे क्यूआर में आवत हुई क्लग आज अपन बैंक वित्तीय संस्था चाहे वॉलेट में संपर्क करी मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस ओ इंटरनेशनल पेमेंट ऐप मन से नेपाल पे क्यूआर में सहजिल से भुगतानी पाए नेपाल पे क्यूआर नेपाल के अपने क्यूआर।

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 वैक्सी 2.7 मेगाहर्ट्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 मेगाहर्ट्ज।
1: जय जय सरस्वती, जय सावित्री, जय जय सरस्वती।